0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
4: Cutthroat Ke Khiladi.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
6: लाइका रेडियो
7: ईजिंग यू थ्रू द नाइट विद लंदन्स

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: Safford Travel, at all protected.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Leica Radio. Easy.

मन सगल पवन की शुद्ध मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत्स्यों प्रगट जाए मन मग ना चले पंथ मन धर्म से ती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

वैसाई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई।

देना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
3: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
4: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: 11plus teacher.co.uk offers 11plus tuitions and 11plus mock exams face to face and online. WhatsApp 07835 929 287 or visit 11plusteacher.co.uk.
10: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
11: What food with dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
12: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
11: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
13: Why are you abseiling down the front of your house, Ross? You have a staircase.
14: I like doing things the hard way, Albert.
13: Try something easier, Ross. Get cheaper off-peak energy. It's available at different times, like during the day or weekends. Just get a smart meter and choose a flexible scheme or tariff.
14: Ooh, I could batch cook some quiche.
13: Perfect. With a smart meter, getting cheaper energy is easier than you think.
15: Eligibility varies. Action required. Schemes and tariffs available to selected customers.
16: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
17: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
0: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.
6: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties.
10: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
11: Hi, this is Chitranjan Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
12: Hiya, it's me, Raj Badin. Catch me every weekday afternoon with my Choice Active, Filmy Scramble, Lyrical Miracle and The Big Question. That's 4 p.m. on Leica Radio Greater London and Leica Radio Midlands.
13: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
14: The Diamond Track of the Hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: The sun is out with Lyca Radio's summer hits.

0: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
1: And gold is currently trading at £104 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Gold prices have hit a record high. It's time to sell your unwanted gold. Sell your gold with Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall, or buy online at gold-bank.co.uk.
1: All right, and that's the end of Hour 2. In the next hour, it's all about Antakshri, so plenty more to look forward to. You're listening to The Mid-Morning Show with Kush, and this is Anuradha in for Kush. Keep it locked with Leica Radio.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: वॉटफुड में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
4: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती लाके दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
9: Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is

0: She's beautiful, is it? Leja, Leja, Re. Incredible vocals of Ustad Sultan Khanage Sriya Ghoshan. So thank you very much indeed for everybody who attempted to fix my phone today. The answer was Mujhe Neend Na Aaye from the film Dil. So many of you got it right. Thank you very much indeed. And also for the Ashoka Samosa competition. My winner today, you're going into the draw for tomorrow morning on The Breakfast Show with Donnie Brasco. It's Kamala Porter. Huge congratulations to you. Make sure you tune in tomorrow morning. And that is it for me. Raj Patton up next on Drive, keeping you company across Greater London and the Midlands. Until 7 p.m, you got Sandy Sean, Like a Gold until 7 p.m. as well. Whatever you get up to, make sure you have an absolutely, totally and utterly fab one.
1: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in-store on 215 The Broadway, Southall.
0: And gold this afternoon trading at £103 exactly per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Hassle-free and reliable way to buy and sell gold coins and bars. Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall. Or buy online at gold-bank.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Time's flying by. So this autumn, let's slow things down. Let's savour the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favourite. Because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favourite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
3: Like a radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
7: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
8: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
9: साउथहॉल ट्रेवल Atto protected.
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
13: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
15: Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is getting

0: download the Pepe's app, the chance to win prizes with every order. You can now receive 25% off after every 6 orders. T's and C's apply. Leave a review to be in with a chance to win a £100 Pepe's voucher.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
4: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Oh jee, samosa lovers, tusi ready ho? 5th September nu aa gaya World Samosa Day. The celebration hovegi full desi style naal, Ashoka samosas de naal. Punjabi, Lahori ya cocktail, har mood te har mauka layi samosa hi samosa. Deep fry karo, air fry karo ya bake karo, bas garma garma Ashoka samosa zarur chakho ji. Kyunki samosa hove Ashoka da te swaad hove full desi. Leo, Ashoka samosas now ji, te manao World Samosa Day Punjabi style.
6: The wait is finally over.
7: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
6: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
9: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
6: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 3 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
8: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया की अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Al Noor, purana baitmat naam, nayi range ke saath. Premium pulses, pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak, aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
14: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
15: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

0: such a beautiful track, isn't it? Dil le gaya koi, aapka dil kaun le gaya? Batao, batao.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Filhal to let's talk about Southall Travel, jo hamesha dil churate hai with their competitive holiday deals to the beautiful land of Dubai. So what are you waiting for? Everything is atoll protected. Call the team right now, 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. It's time for everyone's favourite ride. The Radio Wally Roller Coaster.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: ओजी समोसा लवर्स तुसी रेडी हो 5th सितंबर नु आ गया वर्ल्ड समोसा डे ते सेलिब्रेशन होवेगी फुल देसी स्टाइल नाल अशोका समोसास दे नाल पंजाबी लाहौरी या कॉकटेल हर मूड ते हर मौका लई समोसा ही समोसा डीप फ्राई करो एयर फ्राई करो या बेक करो बस गर्मा गर्मा अशोका समोसा जरूर चखो जी क्योंकि समोसा होवे अशोक

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Easy listening with Radio Wally. Leica Radio.
1: Hello?
2: Mel, something huge has landed.
1: The UFOs, it's all over the news.
2: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
1: I think that's why the aliens are here too.
2: I do now, gotta go.
3: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale event.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
6: Dubai is coming to London.
7: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
6: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
7: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
6: Hurry and register now
7: at nknpropertyexpo.com.
6: Your next investment could begin here.
7: Official Radio Park. Like a radio.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
10: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
11: Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed.

0: ये है लाइका रेडियो पॉडकास्ट। बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE396।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साफो ट्रेवल at all protected.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk.
10: Bollywood romantic hits throughout the night.